श्रोताओं सुप्रभात। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

श्रोताओं, ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है और श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। करें थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही।

0: गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं और श्रोताओं, यह समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मात्र वंदना से। समूह स्वर में सुनते हैं ये देश गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुरी के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवाते हैं मुकेश के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 6:30 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम चिंतन का। कार्यक्रम चिंतन में आलेख है स्वामी निखिलानंद का। FM बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और अभी वक्त है कार्यक्रम चिंतन का। कार्यक्रम चिंतन में आलेख है डॉक्टर राम कुमार बेहार का।
1: हम किस युग में जी रहे हैं, इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार सतयुग, त्रेता व द्वापर के पश्चात कलयुग में हम जी रहे हैं। समाजवादी व विकासवादी व्यवस्था के अनुसार आदिम अवस्था, पशुपालन अवस्था, कृषक अवस्था के पश्चात आज हम औद्योगिक अवस्था तक पहुँचे हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में कलयुग और विकासवादी सिद्धांत का औद्योगिक अवस्था दोनों विज्ञान के युग की ओर इंगित करते हैं। आधुनिक विज्ञान मानव सृजनात्मकता की अभूतपूर्व उपलब्धि है। हमारा संपूर्ण जीवन आधुनिक विज्ञान और उसके परिणामों से ओतप्रोत है। आधुनिक विज्ञान का प्रभाव हमारे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक पहलुओं पर इतने दूरगामी रहे हैं कि विचारकों ने विभिन्न दिशाओं में इस पर चिंतन किया है। विज्ञान का आदर्श यही है कि भ्रामक साधारण ज्ञान के भीतर बुने हुए भ्रम जाल को तोड़कर भ्रम रहित ज्ञान उपलब्ध कराया जाए। विज्ञान इसके लिए जिस पद्धति का प्रयोग करता है वह कल्पना, विचार व अनुभव के त्रिभुज में समाहित है। विज्ञान तथ्यों की अपेक्षाकृत सुस्पष्ट, सुनिश्चित और संदेह रहित व्याख्या करता है। विज्ञान के चार शतकों के फैले काल फलक पर

0: दृष्टिपात करने पर दंग रह जाना होता है कि विज्ञान ने व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आवागमन व संचार साधनों ने विश्व को इतना छोटा बना दिया है कि विज्ञान अब अंतरिक्ष को अपना विषय वस्तु बनाए हुए है। विज्ञान के लक्ष्य क्या हैं, इसे समझने के लिए विज्ञान का इतिहास जानना होगा। यह लक्ष्य समय के साथ साथ बदलता रहता है। एक अभीष्ट की सिद्धि के पश्चात दूसरे अभीष्ट की प्राप्ति ही विज्ञान को जीवंत बनाए हुए है। मानव समस्त सत्ता को अपनी बुद्धि की पकड़ में विज्ञान के माध्यम से लाना चाहता है। वह विज्ञान के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है। जहाँ तक विज्ञान के पहले लक्ष्य का सवाल है, यह लगभग प्राप्त किया जा चुका है, मगर मृत्यु पर विजय के प्रयास में विज्ञान को अभी सफलता नहीं मिल पाई है। भारत में विज्ञान और वैज्ञानिकों का इतिहास बहुत पुराना है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, सुश्रुत, चरक से लेकर सी वी रमन, मेघनाथ साहा, विक्रम साराभाई ऐसे नाम हैं जो भारतीय विज्ञान जगत के चमकते सितारे हैं और जिन पर न केवल भारत को वरन विश्व को भी नाज है। विज्ञान के बारे में एक तथ्य सदैव विस्मृत नहीं करना होगा कि विज्ञान एक अच्छा सेवक मगर बुरा स्वामी है। चीनी विचारक माओत्से तुंग ने लिखा है, विज्ञान मनुष्य के सेवक हैं और हर समाज को चाहिए कि वह इनके अच्छे और बुरे पहलुओं का विश्लेषण निरंतर करता रहे और उनमें सदुपयोग की विधियां खोजता रहे। माओत्से तुंग के विचारों पर चलने से ही विश्व का लाभ है। रसवती भू के मनुज का श्रेय नहीं यह विज्ञान कटुआग्ने, श्रेय उसका प्राणों में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत, श्रेय वह विज्ञान का वरदान।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आलेख डॉक्टर राम कुमार बिहार का, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:35 हो चुके हैं और श्रोताओं, ये समय है श्री रामचरितमानस गान के संगीतमय पाठ का। इस घड़ी में मुख्य गायक स्वर है शोभा जोशी के, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था।

इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। इस कड़ी में मुख्य गायक श्रद्धा शोभा जोशी का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:46 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है आपको जानकारी देने का आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

नमस्कार बालाघाट। समाचार प्रभात हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वक्त होगा सुबह 8 बजे का। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8:30 पर होगा कार्यक्रम समन्वय रूपक। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 से लेकर 11 बजे तक आप आनंद ले सकेंगे फिल्म आपकी पसंद कार्यक्रम, फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। वक्त याद रखिएगा सुबह 10:05 से 11 बजे तक।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। समय होगा सुबह 6:50 का। प्रादेशिक समाचार होंगे रोजाना की तरह सुबह 7:10 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम।

दोपहर 2:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 2:15 पर आप सुन सकेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से। दोपहर के 2:30 से लेकर के शाम के 5 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी कार्यक्रम युववाणी के साथ। वक्त होगा शाम 5 का। 5:30 पर फिल्म संगीत का आप आनंद लीजिएगा। 5:30 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे केंद्र से ही। शाम 6 आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। शाम 6:30 पर सुगम संगीत का आप लुत्फ उठाएंगे। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के तहत। और शाम 7:05 पर दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। और 7:30 पर किसान साथियों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे। रात 8 फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे। रात 8:30 पर पॉप म्यूजिक सुनिएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से। रात 9 विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित होंगे मुंबई केंद्र से। स्पॉटलाइट समाचारों का वक्त होगा रात 9:15 पर। 9:30 से रात के 10:30 तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम का। रात 10:30 से 11 तक आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 11 समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यही संपन्न हुआ।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है जूली और इस गीत में बोल है अमित खन्ना के संगीत बप्पी लहरी का। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में जूली फिल्म का गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में जूली फिल्म का गीत। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और अमित कुमार के स्वर में। आंधी फिल्म का ये गीत है और इसमें बोल है गुलजार के और संगीत एक बार फिर आरजी बर्मन का ही। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी अमित कुमार की आवाज़ में आंधी फिल्म का ये गीत।
1: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। आवाज एक बार फिर से संजीव से आज गहन का बोल है आनंद बख्शी जी।

0: श्रद्धांक किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त। FM बैंड 101.3 MHz पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:10 हुए हैं।
1: हुआ सपना जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण

कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे

0: लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभआईडी बनाए जा चुके हैं। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना उज्जैन

और का इतना समृद्ध और नायाब खजाना है कि इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, बशर्त है कि हम उसे ऐसा समझें। हमारे अपने अनुभवों का ऐसा एक चमकदार आईना हमारे पास मौजूद है जिससे हम अपने अतीत की सारी घटनाओं को सही रूप दे सकते हैं। लेकिन मुश्किल केवल यह है कि हम दूसरों के सामने बहुत ही जोरदार तरीके से ये दावा करते हैं कि मैंने अपने बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों के सर के बाल धूप में ही सफ़ेद होते हैं। इसलिए ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि अतीत की स्मृतियाँ मुख्यतः हमारे अनुभव ही होती हैं। आइए श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ आप और हम करते हैं इस गीत के साथ अपना मनोरंजन।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री प्राप्त की जा सकती है।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
2: श्रोताओं, आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई की अगर हम विशेष महत्व की अगर हम बात करें तो इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। श्रोताओं, यह दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है। इस आयोजन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा 1989 में की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 को मनाए जाने वाले लोगों के प्रति रुचि को प्रेरित करने का इसका उद्देश्य था। विश्व जनसंख्या दिवस में लगभग यह तय किया जाता है कि जब यह जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी तब इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य परिवार नियोजन का महत्व, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना होता है।

श्रोताओं, ये दिन मनाने का सुझाव हमें दिया था डॉक्टर के सी जांजरिया ने, जब वे विश्व बैंक के वरिष्ठ जनसंख्याविद के रूप में कार्यरत करते थे। उस समय जनसंख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच गई थी, जिससे जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक कराने का इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में इसकी जागरूकता को फैलाना था। नवंबर 2020 में यूएनएसएफ ने केन्या और डेनमार्क में सरकारों के साथ मिलकर नैरोबी में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, ताकि अधूरे लक्ष्यों को प्राप्त करके प्रयासों को तेजी से जागरूकता में लाया जा सके। विश्व जनसंख्या दिवस पर दुनिया भर के नेताओं और निर्माताओं, जर्मनी के स्तर आयोजक संस्थाओं द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और इसे मनाने का एकमात्र उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण पर लोगों को जागरूक करना। तो आइए श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ अब हम लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का ये नमस्कार बालाघाट का अंक अब हम यहीं पर करते हैं समाप्त। चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला MK जैन और MK कोस्टा का, प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की, और इस कार्यक्रम को लेकर मैं आज थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र रीमा। तो दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार,
1: नमस्कार बालाघाट।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। FM बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। करें थोड़ा सा इंतजार।
2: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया।

0: औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।

0: समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार।

कंपनी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं पहली गजल के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई इस गजल को, और इसी गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 होने को हैं, और श्रोताओं अब आप सुनेंगे कार्यक्रम समन्वित रूपा कुछ ही देर में। करें थोड़ा सा इंतज़ार।

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। नमस्कार दोस्तों, सुरमई सवेरा में अब से लेकर 9:15 तक आपके साथ हूं मैं छाया पाठक।

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुरमई सवेरा यानी सुरों से भरा हुआ सवेरा, सुर अर्थात संगीत, ऐसा संगीत जो मन को सुकून दे, शांति दे, निराश मन को एक नई ऊर्जा, नए उत्साह से भर दे। थोड़ा सा सुकून हो, थोड़ा सा संगीत हो और बहुत सारा अपनापन हो, इसी एहसास के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे गीत और बहुत सारी बातें। इस नई सी हल्की सी ठंडी हवा के साथ आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मित्रों, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का। हम चाहते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए सुकून और सफलता भरा हो। चाय की खुशबू हो या रास्ते की हलचल, हम हर पल आपके साथ रहेंगे।

मित्रों, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी निराशा। हमें ये याद रखना होगा कि हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है, हर गिरावट हमें मजबूत बनाती है पहले से ज्यादा। संघर्ष ही हमें ये बताती है कि हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। निराशा ही हमें आशा की ओर बढ़ने के लिए संकेत करती है। अगर आज हमारा मन थोड़ा भारी है तो क्या हुआ? ये हमें याद रखना होगा कि यह दिन भी गुजर जाएगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी। बस हमें खुद पर भरोसा रखना है।

श्रोताओं, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर प्रकृति को भूल जाते हैं। प्रकृति यानी पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, खुला आसमां, खुली हवा हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और हाँ, ये अनमोल भी है। आज हमने इन्हें नहीं संभाला तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे पानी बचाना, पौधा लगाना, पौधे की देखभाल करना, पौधों को कटने से बचाना आदि ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी सवेरा ये सुरमई होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों।

शिक्षा जीवन की वह रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी आसान बना देती है। यह हमें केवल किताबें नहीं बल्कि कुछ सोचने समझने की दिशा भी सिखाती है। हर शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और हर विद्यार्थी एक असीम संभावना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि हमारा लिया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे किसी भी चीज का ज्ञान हो। और यदि ये ज्ञान, ये शिक्षा खेल से संबंधित हो तो फिर तो सोने पर सुहागा, क्योंकि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह न केवल शारीरिक रूप से हमें फिट पर रखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाते हैं। खेल ही हैं जो हमें अनुशासन और टीम वर्क जैसे गुण सिखाते हैं। नियमित रूप से खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। खेलने से हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जो हमारा दिन भर का तनाव है वो भी कम होता है। बहुत से खेल होते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। ये सब खेल हमें मिलजुल कर खेलने, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी सिखाते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

की सावधानी दिलाती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित और सुकून भरा सफर करें। सीट बेल्ट, हेलमेट, ट्रैफिक सिग्नल, इन सब नियमों का पालन करें। संगीत का आनंद लें, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करते रहें। हम हैं आपके साथ हर रास्ते पर।

श्रोताओं, अगर आप इस समय गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क पर पूरा ध्यान दीजिए। सुरक्षित ड्राइविंग आप और आपके अपनों को सुरक्षित रखती है। तेजी मंजिल नहीं दिलाती बल्कि

0: श्रोताओं, सुरमई सवेरा का ये सफर जारी रहेगा आगे भी, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का अवलोकन भी किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समन्वित रूपक आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9 बजे। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
5: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
7: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
8: एक और लग गया तेरे पीछे क्या?
9: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: सुनिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: हाय यशोदा, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: तो अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए, और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छे बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुन टुन।

0: गया।
1: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए और

0: पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: 1950 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड पर। यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं और श्रोताओं आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
3: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों के हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प

सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10,31,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 होने को हैं। और श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि आधारित होता है आपकी फरमाइशी खतों पर। सुबह के 10:05 हो चुके हैं, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे सभी श्रोताओं का आपकी रेडियो मित्र का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की फरमाइश की अगर हम बात करें तो हमें पहली फरमाइश लिख भेजी है इंद्रप्रस्थ सदन रूदी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत साहू, सीमा साहू, सूर्यकांत साहू, राकेश साहू, शुभम, शिखा और सैफाली।

साहू ने। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं ताल फिल्म का गीत, तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हाँ आपको सुनवाते हैं ताल फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ है सुखविंदर सिंह की, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और बोल हैं समीर के।

श्रोता, अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ताल फिल्म का गीत, और अभी आप आनंद ले रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश, रेखा साव, कमलेश साहू रांची, सेजल साव, हनी, हिमांशु, डिम्पी और इनके सभी साथियों ने। और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ है अलका याग्निक और सोनू निगम की। आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आप और हम मिलकर सुन लेते हैं ये कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, कुछ कुछ होता है इस फिल्म से। इस गीत में आवाज़ है अलका याग्निक, उदित नारायण और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है अंकित चौकाले, प्रदीप कुमार और साकेत अंकित। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत।

श्रोता, अभी आपने सुना कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, और अभी आप आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों से भरे कार्यक्रम आपकी पसंद का। श्रोता, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं सैयारा फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें लीक भेजी है बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू। विभा, वैभव, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशी साहू और इनके सभी साथी। आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुन लेते हैं।

0: श्रोता, अभी आपने सुना जुबैर नौटियाल की आवाज़ में सैयारा फिल्म का गीत, और अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में बारी एक छोटे से अंतराल की।
1: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं रन फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है कविता हिरकने, अनुराग ठाकुर और इनके सभी साथियों ने। आइए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं रन फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना रन फिल्म का गीत, आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं राज फिल्म से। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम बनिया टोला वारा सिवनी से राजेंद्र, रमेश, राकेश और उनके सभी साथियों ने। आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते हैं राज फिल्म का गीत।

श्रोतो, अभी आपने सुना साजन चले ससुराल इस फिल्म का गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी दुगलई से, समनापुर दुगलई से हमें लिख भेजी थी चंदू कुलकर्णी, हेमलता कुलकर्णी, परभणी कुलकर्णी और सियाल कुलकर्णी ने। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं राजनीति फिल्म से।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं और श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। करें थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है। ओ,

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमि।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलील चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती पर, अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत था। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल

अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट

0: लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल यार, रहमान का संगीत।

1947 अर्थेस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं। तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी? कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ? वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज़्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोज़ाना आप क्या करते हैं, ये भी ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतज़ार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है? कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है, हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी, गम, शोर, खामोशी

तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बा

व्यक्ति हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, ज़रा बूझते रहिए। आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतज़ार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौक़ों पर दीप जलाते हैं आप, ज़रा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर। ये सुदास और हेमलता की आवाज़ें।

चित चोर फिल्म का गाना था, येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं। और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्यौहार के दौरान होती है, पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा, तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं, बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं। और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज़्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज़्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और ज़रा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब? तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गजब का है, ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है। बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना, और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर ज़रूर बताइए, और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहाँ पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है, क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं, और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, बसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल, रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी, अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे, ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं, और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई, अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ

पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया। बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं, जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराज़गी भी है और दुख भी है, अवसाद भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूँ ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो ज़रूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अनवरत क्रियाशील रहती है।

ऐसे इसने धड़कना छोड़ा, व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास खास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तनहा

अकेला पन लग रहा हो तो उन्हें ये गाना जरूर गा के सुना दीजिए कि यहाँ सुबह जरूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिर लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफ़र। बाकई खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज़्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई, हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: जाना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना है। इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज आयोजित होने वाला माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नए अवसरों पर संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
1: 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष बनाकर प्रदेश को देश को आगे बढ़ाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में युवा और खास करके यूथ कॉन्क्लेव का आज का जो आयोजन है, ये हमारे भविष्य के मध्यप्रदेश के साथ आज का मध्यप्रदेश भी मजबूत बने, युवाओं को सब प्रकार का रोजगार मिले, उनके सपनों को पंख लगे, सरकार की योजनाओं के साथ उनको जोड़े और अब एक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के बहुत बड़े पैमाने पर काम जारी है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिंड जिले के मुकेश सिंह भदौरिया ने योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। मत्स्याखेट पर लगे प्रतिबंध के बीच मत्स्य पालन विभाग ने नर्मदापुरम जिले के डोंगरवाड़ा और सुहागपुर में कार्रवाई कर 2000 किलो से अधिक मछली जब्त की है। शिवपुरी जिले में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रोजगार कार्यालय में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन और अपार आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया।

0: न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर

0: बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझा

0: अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकार

0: कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है,
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहेगी। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।